rápido. Explico super na boa, na verdade. प्यारा चीज है भले एक तार का है लेकिन कितनी प्यारी चीज है पहले तो आपको इसकी खूबसूरती में आता है। ये हमारे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे आप हमारे हजरत बिलाल थे हजरत बिलाल सैयद मोदी आप उनकी मंगनी के अंदर गए थे तो आप सरकार ने वहाँ पे बाजा देखा गया माशाल्लाह सरकार बोले आपके यहाँ तो बड़ा प्यारा बाजा है तो आप सरकार बोलते हैं कि क्या आपको बजाते आता है बिलाल को बुला के बेशक बोले बिलाल बोलते हैं मेरे को बेशक बजा के आते हैं तो बोले कैसे बजाते हैं तो बोले क्या बोले क्या बोलता है फिर मुझे तो फिर बाजा आपने आप सरकार ने अब बाजा बजाया।